वायुतिमान्यमतहु आन्दयिक वयत्याकाशिरोतं मुस्तकीमा वायुं शुरोकाहु नस्तु